0: Sunrise Radio. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Wellman and Wellwoman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
2: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
0: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Wellman and Wellwoman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

0: दीवार।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June।
3: दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5।
4: द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल मैन एंड वेल वुमन सप्लीमेंट्स फॉर मेन एंड फॉर वुमेन, फॉर व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट यू, फ्रॉम विटाबायोटिक्स, द UK's नंबर वन विटामिन कंपनी, अवेलेबल फ्रॉम फार्मेसीज, सुपरमार्केट्स एंड विटाबायोटिक्स.com। फॉर नंबर वन वेरिफिकेशन सी विटाबायोटिक्स.com।
3: गुड म्यूजिक, ग्रेट फिल्म्स, द क्लासिक्स, गेम चेंजर्स ऑन OTT एंड द बिग स्क्रीन। इफ Bollywood floats your boat, come sail with us. Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV, weekdays from 9 a.m.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. Din mein bablu, raat mein lalli. Ye kalakar ban gaya hai sabka kaal. Baap ki maut ka badla lene aa gaya hai bablu. देखिए सतरंगी बदले का खेल स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5.
3: द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल मैन एंड वेल वुमन सप्लीमेंट्स फॉर मेन एंड फॉर वुमेन फॉर व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट यू फ्रॉम विटाबायोटिक्स द UK's नंबर वन विटामिन कंपनी अवेलेबल फ्रॉम फार्मेसीज सुपरमार्केट्स एंड विटाबायोटिक्स.com फॉर नंबर वन वेरिफिकेशन सी विटाबायोटिक्स.com.
4: This is the UK's biggest Asian mix.

0: मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना फ्रॉम पाकीज़ा। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम। नाउ डोंट मिस वाद्य महोत्सव दिस सैटरडे ऑन द 6th ऑफ जून एट द रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेथ एंड कल्चर हियर इन द UK। इट इज अ फैमिली इवेंट विद एन इम्प्रेसिव म्यूजिकल सेलिब्रेशन फीचरिंग ढोल, ताशे एंड सो मच मोर। बुक योर टिकट्स नाउ एट svrtuk.org।
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV।
2: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
0: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Bareilly ki Bachchan starts 8th June Monday to Friday at 10 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5।
3: Shabnam Sahi on Sunrise with India's Best Dancer on Sony TV. The stage is set. The dancers are ready. Join Karishma Kapoor in the new season of India's Best Dancer. Starts this Saturday 9:30 PM only on Sony TV.
4: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: Shabnam Sahi on Sunrise with India's Best Dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's Best Dancer, is back. Starts this Saturday, 9:30 p.m. on Sony TV.
1: Celebrity Cruises summer sale ends today. Don't miss at least 60% off the cost of your second guest, plus up to £650 additional savings. Our new Celebrity XL erases the line between ship and shore and brings the culture and flavours of Europe right along for the ride. With 9 ships sailing to 132 destinations in 24 countries, your happy places. Visit more of Europe than ever. Join us and see why nothing comes close to Celebrity Cruises. Book a cruise and get return flights to Europe from £199 per person. In addition to the summer sale savings, Sunrise listeners can also enjoy 5% savings on eligible sailings. For more information and your discount code, go to sunriseradio.com. Terms and conditions apply.
2: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
2: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
2: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
4: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
3: वसीम ज्वेलर्स।
5: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली, वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल, सिर्फ हिंदी Z5 पर।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
3: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
7: Must be won.
3: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
2: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा. सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा. बबलू महतो काल बनकर आ गया है. दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर.
8: शबनम साही ऑन सनराइज विद इंडियाज बेस्ट डांसर ऑन सोनी टीवी. द स्टेज इज सेट, द डांसर्स आर रेडी. जॉइन करिश्मा कपूर इन द न्यू सीजन ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर. स्टार्ट्स दिस सैटरडे 9:30 PM ओनली ऑन सोनी टीवी.
2: The thought of the day with Citybon Travel. With over 50 years of turning dream holidays into reality. From flights and holiday packages to honeymoons, cruises and escorted group tours, enjoy special deals to India, Dubai, Japan, Vietnam, Cambodia and more. Call Citybon Travel on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk.
9: Nagarjuna said, a film's success does not depend on box office collection and the number of days it was screened, but on the amount of satisfaction an actor can draw from it.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद।

0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next. Sunrise Radio. Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's have given away so many prizes on the Pepe's app. Download now, order and have your chance to win some great prizes.
1: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर।
2: Joya Lucas brings you an exclusive 35% off on making charges for gold, diamond jewelry and precious stone jewelry. Also enjoy 0% deduction on old gold exchange. To the NHS nurses who heal with their hands and care with their hearts, Joya Lucas honors you with a flat 40% off on making charges. Just present your valid ID. Offer valid until 7th June only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.

0: Stop, stop, stop. What is that?
1: The UK's biggest Asian mix. Sunrise Radio. ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ
2: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: Planning the holiday of a lifetime or visiting loved ones? Call Southall Travel 24/7. Fast, reliable and with a price match guarantee. Book now on 0208-574-8410. Southall Travel. Any airline, anywhere, anytime. At all protected.

0: quality foods.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूजडे टू संडे। जिस घुंघरू ने बाप की जान ली, वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल, सिर्फ हिंदी Z5 पर।
2: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

0: पंजाबी गुजराती से गाए
1: फिर शुरू हो जाओ और नचवानी हारूनी
0: दारुनी ठाकर द वर्कर फ्रॉम द फिल्म पटेल की पंजाबी शादी. Feel the energy right there. Brilliant. Okay, here we go. Beat the intro. Have a listen to this. Who is going to be my hero of the hour? And give me the answer first. Here we go. 3, 2, 1. Oh, 7925-700-272. What is that? What film is it from? Have another listen. That's it. I will give you an extended version.

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली, ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777. This is Sunrise, the UK's biggest.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।